0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga.
1: Milci, burga. Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: थी किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
2: मैंने क्या किया पता?
3: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे
1: डे The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको

0: टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे
1: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है नहीं है। मैं मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार।
0: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं,
1: कितनी डायरेक्ट होने। तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई।
1: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप।
0: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना।
1: आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे बहस करे जा रही है।
0: और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से थोड़ा ना बीमार होगा।
1: आपके कारण से हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ। एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है। आप बहस करे जा रही है मेरे से।
0: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
1: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी।
0: हाँ बताइए
1: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
0: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
1: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जी जी जी
0: यार, आप लोग किसी दिन ना मतलब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, सो मच टू डू। वी नो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट हे, लिटिल मोमेंट्स ऑफ फन आर इम्पोर्टेंट टू। सो आर यू रेडी टू मेक योर स्कूल डे अ लिटिल मोर एक्साइटिंग?
4: बिकॉज मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाई GWM इज कमिंग टू योर स्कूल। मिर्ची आरजेस विल बी देयर विद फन, गेम्स, मस्ती, एक्साइटिंग प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, बिकॉज लर्निंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व्स अ लिटिल फन टू।
3: दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाई GWM।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Cut, cut!
8: Who that?
7: Agar kar!
8: Agar kar who?
7: Agar karna hai to kar, warna chhod de!
8: Cut, cut! Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
9: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our right.

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
3: Toilet?
2: हाँ.
3: School था, कंजर खाना खुला हुआ था.
2: So, दोनों.
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1

0: अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
0: नींद में है क्या?
1: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर,
0: मैं क्या बेल मेरे यहाँ बजी है,
1: आ जाते हैं उठ के। मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखे चले। हेलो, हाँ बताइए।
0: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है? हेलो,
0: फिर कोई
1: यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार? मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
0: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
1: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
0: फोन नहीं कर रहा अभी,
1: बदतमीजी से बात मत करिए आप, समझ गया? मैं यहाँ से चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ मैं।
0: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन क्यों?
0: आराम कर दिया तुम जैसे
1: जीना, बता रहा हूँ यहाँ से भाग। इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ, दांत तोड़ दूंगा। चप्पल है मेरे हाथ में।
0: फोन आ रहा है, मेरी बात आएगा, फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: Yes, it was the best. I like the magic show.
7: Magic show, and you?
8: I also like the magic show very much. It was so good. It was very nice.
7: You liked it?
8: Yes.
7: We should come again?
8: Yes.
7: What's your name?
8: Aira.
7: And yours?
8: Anvita.
7: What was the best?
8: The magic show.
7: And you?
8: Magic show. I like magic show.
7: Magic show. Jamshi uncle was great.
8: This recharge is so cool.
9: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
10: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
11: बार बार
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन
14: इट्स हॉट।
15: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: 89.6, 89.6,
3: मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल।
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: vidva la burka. Milci, burka. हेलो
2: हेलो विनीत जी।
1: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
1: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से?
1: हेलो
2: विनीत जी।
1: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ

0: अकेला
1: मैं आपके वही एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
0: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
0: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितनी चढ़ रहे हैं सर?
0: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चलाएंगे?
0: हेलो हेलो,
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
0: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
0: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
2: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
0: अच्छा भैया आप मेरे जाने वाले थे, बजाने वाले थे। कुकुडुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
2: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
6: जबरदस्त ट्रैक्स।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रियन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी,
5: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया 2 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो 1 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया 9 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया 9 दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए 3-3। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए 6-6। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए 5-5। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए 7-7। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
1: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ू को
3: बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
1: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब मेरी सारी फसलें देने लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,000।

0: मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट हो दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry bro, sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित्स विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: थी किसी की पता नहीं किसकी थी
2: ना. आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
1: मैंने क्या किया
2: पता? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये जाना सनम.
1: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
1: नहीं मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से थोड़ा ना बीमार होगा.
2: आपके कारण से हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए.
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है मुझे राजीव ने, तुम्हारा नंबर दिया था. और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जी जी जी.
1: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खटखट।
6: कौन है?
5: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खटखट, हू दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's hot
4: Cut cut
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Are whom are you looking for madam?
5: cut cut Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1 Mirchi It's hot

0: Mirchi. Disca bala, busca bala, saca bala. Gran bala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: मैं
1: नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: मैं क्या बैल मेरे यहाँ
1: चाहिए आ जाते हैं उनके मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखिए तेरे हेलो हाँ बताइए
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
2: फिर कोई
1: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा
1: मैं आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी, मेरी आएगा फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट पकड़
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन लेट्स हियर इट फ्रॉम देम
5: Yes, it was the best. I like the magic show.
6: Magic show and you?
7: I also like the magic show very much. It was so good. It was very nice.
1: ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट पकड़
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन लेट्स हियर इट फ्रॉम देम
5: Yes, it was the best. I like the magic show.
6: Magic show.

0: रैफल कूपन,
1: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए,
0: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
1: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
2: खट खट
3: पुरेर
2: बनता
3: बनता हूँ।
2: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
3: खट खट हूँ दैट
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: खट खट।
1: कौन है?
0: ईशांत।
1: ईशांत कौन?
0: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत।
2: खट खट हु दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wird bala burka. Milci burka.
1: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो।
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया जाने वाले थे, बजाने वाले थे।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
5: खट खट।
6: Who that?
5: जाहिर।
6: जाहिर। जाहिर हूँ।
5: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
6: खट खट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
6: दवे
7: दवे कौन?
6: The way you love me, I हाय मर जावा।
7: खटखट, who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। मैं क्या, मौसम का बदलाव होने ही वाला है और अक्टूबर का आगाज हो चुका है। जी हाँ, जैसे ही अक्टूबर का आगाज होता है तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मौसम अब बदल जाएगा, एकदम से ना मौसम में बदलाव आ जाएगा। और वाकई में ऐसा होगा, बस एक दो दिन और रुक जाइए, आपको सुबह की जो हवा है ना वो ठंडी लगने लग जाएगी, शाम की हवा भी ठंडी लगने लग जाएगी, लेकिन हाँ बीच में वैसा ही मौसम रहेगा गर्मी वाला। लेकिन येस ऑफ कोर्स, अक्टूबर इज समथिंग जो एक मौसम के तौर पे ना खुशियां लेके आता है। ऐसा लगता है कि भाई बस अब आने वाला है विंटर और कोजी कोजी नाइट्स, बारबेक्यूज जो हम लोग पार्क्स में करते हैं, एंड ऑफ कोर्स पिकनिक्स बहुत सारी, एंड उसके अलावा बीच पे आप जाते हो पिकनिक मनाने, बीच पे करते हो आप अपना बारबेक्यू सेटअप, इतना कुछ, इतने ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं ना जब आप विंटर में कतर को देखते हो। बस खूबसूरत नज़ारा आने वाले टाइम में मौसम के बदल देखी, ओह क्या ही नज़ारे होने वाले कतर के। बस अभी चंद मिनटों में मैं आपको बताऊंगी होने वाले सारे इवेंट्स, एग्जीबिशंस, शोज, सब कुछ हियर ऑन माय शो। बस करना क्या है, बस बने रहिए ना मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ। किस पे? 89.6 मिर्ची 1 पे। इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो,
2: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया 2 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो 1 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया 9 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया 9 दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए 3। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए 6। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए 5। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए 7। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो,
2: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
1: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया
1: जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए।
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256 GB।
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफेल लो और ड्राइव द ड्रीम।
7: खट खट,
8: कौन है?
7: अज्जू।
8: अज्जू कौन?
7: अज्जू ना आए बाल मां, सावन बीता जाए। होए
8: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
9: मुश्ताक अगेन।

मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ गानों के साथ ना बहुत जुड़े होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब उस गाने को, बहुत पुराने गाने को जो मैंने शायद अपने कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में सुना हो, उस गाने को मैं अगर दोबारा अभी सुनूंगी ना, तो मुझे एक वो फीलिंग सी आएगी, वो फीलिंग आएगी जो मुझे शायद स्कूल टाइम पे आती थी। आई थिंक दैट वॉज द फ्रेंड सर्कल, दैट वॉज द टीनेजर थिंग, जो भी वो एक ऑरा था, वाइब थी उस टाइम की, वो मैं अभी भी फील कर पाती हूँ। आप भी मानते हैं क्या गानों के साथ ऐसा रिलेशन हो जाता है? अगर आप भी ऐसा मानते हैं ना, तो मैं आपको ये एक सच्चाई बताती हूँ, ऐसा होता है। आप बैक टू डोज मेमोरीज चले जाते हो जब आप किसी पुराने गाने को सुनते हो, उससे जुड़ी जो भी मेमोरीज होती हैं वो आपको याद आ जाती हैं। एंड सेम विद नॉट ओनली विद द सॉन्ग्स, लेकिन ये आपका परफ्यूम्स के साथ भी होता है। परफ्यूम के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप होता है ना इंसान का, कि अगर आपने 4 साल पहले या 5 साल पहले वो परफ्यूम लगाया है और उसके साथ जो यादें जुड़ी हैं, सपोज आप उस परफ्यूम को लगा के आप कहीं घूमने गए हो, यूरोप गए हो या कहीं भी दुनिया में घूम रहे हो, उस परफ्यूम को लगा के आप अगर उस परफ्यूम को छोड़ देंगे कुछ सालों के लिए, अगर आप उसको फिर दोबारा से सूंघेंगे, आपको वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। जब आप घूमने गए थे, जब आपने शायद

मेट्रो पहली बार ली थी यूरोप में, या फिर पहली बार आपने वेटिकन सिटी में आइसक्रीम खाई थी, उन सब यादों को ताज़ा होना लाजमी है उस परफ्यूम की खुशबू से। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं ना, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं मिर्ची वन कतर पे एंड ऑल्सो मिर्ची ईशा पे, एंड ऑल्सो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5111089 6 पे भी बता सकते हैं कि आप क्या मानते हैं। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो नॉट ओनली विद दीज थिंग्स, फूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड के साथ भी ऐसा ही, अगर आपने कोई ऐसा खाना आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दे, बस आपको लगेगा कि इस याद से ये खाना मुझे इस इंसान ने खिलाया था ऐसे बना के, बस आपकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बस वैसे ही फिलहाल मैं आपको गानों के साथ साथ बताऊंगी इवेंट्स, बस मेरे साथ बने रहिए 89.6 पे मिर्ची वन पे, इट्स हॉट।

देखिए बचपन से ना आज तक मैंने एक कहावत जरूर सुनी है अपने बड़ों से, दैट इज कि जैसा देश वैसा भेष। एंड इट सिंपली मीन्स कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का ट्रेडिशन कल्चर को इतना करीब से देखिए और इतने करीब से उसको यू नो फॉलो करिए ताकि आपको लगे कि आप इस कंट्री के ही फैमिली मेंबर हो। तो बस अगर आपको भी मेरी तरह इन ट्रेडिशंस को और क्रिएटिव साइड्स को देखना पसंद करते हैं या आप उसमें यू नो अपने आप को इंडल्ज करना डिग करना पसंद करते हैं ऐसे कल्चर में, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूँ। जी हाँ, बता दूँ कि होने जा रहा है मीना डब्ल्यू फीना, जो हो रहा है आउटडोर कोर्टयार्ड अल हजम में, एंड ये 24 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो नो हरी, आप आराम से जाइए जब मर्जी। एंड इसके टाइमिंग्स हैं 3 PM to 11 PM एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटली फ्री है एंट्री। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो एटमोसफेयर ऑफ यू नो कतारी बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस या आपका कह लो कि हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं या पेंटिंग्स हैं जो कतर की प्रॉपर जो यू नो ट्रेडिशन शो करता है, हेरिटेज शो करता है। इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी कतर की, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, क्रिएटिव साइड देखना चाहते हैं कतर की, जाइए इस वीकेंड और इन्जॉय करिए बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, फैमिली के साथ शाम को जाके इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह पसंद करते हैं ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना तो ज़रूर जाइएगा। And stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

कतर को जैसा हम आज की डेट पे देखते हैं वैसा ही कई साल पहले नहीं था। बहुत बड़ा चेंज कतर में देखा गया है। और अगर आप इस चेंज को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कतर ने कहां से शुरू किया और किस तरीके का लाइफस्टाइल था उसका पहले, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे आप बहुत साल पीछे चले जाएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कतर की हिस्ट्री, लाइफ, किस तरीके से ट्रेडिशनल होम्स होते थे, विलेज स्ट्रीट्स होती थी, हेरिटेज सब डिस्प्ले है, किस तरीके से लोग पहले ज़माने में रहते थे, किस तरीके से वो व्हीकल्स जो हैं उनमें ट्रैवल करते थे। एंड उसके अलावा आपको ये ब्यूटिफुल सी कंट्री की प्राइवेट कलेक्शन आपको मिलेगी सिर्फ एक जगह, दैट इज़ शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम में। एक और बात बता दूं कि हर कॉर्नर जो है ना वहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा जो आपको तो फैसिनेट करेगा ही, लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि वो कतर हिस्ट्री भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जब वो कतर की हिस्ट्री को देखेंगे दे विल फील फैसिनेटेड एंड दे विल फील कि यार मुझे और जानना है कतर के बारे में, वाकई में ऐसा फील होगा। और अगर आप इस म्यूज़ियम में पहले जा चुके हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर बताइएगा कि आप गए थे बच्चों के साथ और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप मिर्ची वन कतर पर भी बता सकते हैं और मिर्ची ईशा पर भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था। और उसके बाद या उससे पहले कभी भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अल समरिया इस्टेट है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं पीसफुल सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको अरेबियन ऑरिक्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको पीकॉक्स भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम के पास। एंड अगर आप नहीं गए हैं तो जाइएगा ज़रूर। इस वीकेंड बच्चों को लेके जाइए और इन्जॉय करिए इस वीकेंड को। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह, यू नो, ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: कट कट
4: भट्ट
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ.
4: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है.
5: खट खट हू दैट,
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الو ميرتي البلاين،
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

बड़ी कानाफूसी चल रही है कि बड़ा सा इवेंट आने वाला है, तो भाई ये क्या सच है? देखो मिर्ची ईशा आपके साथ है और आपको कोई इवेंट के बारे में ना पता हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं होने देती। लेकिन आपको बता दूं कि भाई सच्ची में एक स्नीक पीक लेके आई हूँ एक ऐसे इवेंट की जो भी शुरू भी नहीं हुआ है, होने वाला है जल्द ही एक ऐसा बबल प्लैनेट इवेंट जहाँ पे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आने वाला है आपके दोहा में बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि यहाँ पे 10 से भी ज्यादा इमर्सिव थीम रूम्स हैं, वीआर एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरैक्टिव सिमुलेटर्स हैं, ऑप्टिकल इल्यूजंस हैं, जायंट्स फेयर्स हैं, बलून्स, कलरफुल विजुअल इफेक्ट्स, ओ माय गॉड क्या क्या नहीं है, जो बोलोगे आपको वही मिलेगा। आज के जमाने का कोई भी इवेंट आप निकाल के देख लो, इमर्सिव एक्सपीरियंस के बिना मजा ही नहीं आता। तो बस अगर आप भी चाहते हैं इस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने का जो मौका मिल रहा है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेट जो है दैट इज ऑन 6 दिसंबर से ये शुरू होगा और ये 6 फरवरी 2027 तक रहेगा। एंड ऑफकोर्स ये बता दूं कि ये जो इवेंट है ना, ये आपका विंटर वेकेशन के टाइम बहुत काम आने वाला है, बड़ा मजा आएगा। कतर में हो, विंटर है और ये एक्सपीरियंस है भाई, मजा ही आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। QNCC में होने जा रहा है ये, एंड ये हर एज के बच्चों के लिए ओपन है। ऑफकोर्स 17 से एज से जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएं तो बेटर है, एंड उसके अलावा चिल्ड्रंस अंडर 4 आर टोटली फ्री। भाई इतना बड़ा और इतना वाइड एक्सपीरियंस हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो जब मिले फटाक से उसका इस्तेमाल करिए, यूज करिए और एक्सपीरियंस का लुफ्त उठाइए। एंड एंजॉय विद मी यानी कि मिर्ची ईशा के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स लेके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एट हार्ट।

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: थी किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
1: मैंने क्या किया?
2: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है नहीं है? मैं मेरे को पता था मैंने आपको कॉल किया मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये
1: तो
2: जाना सनम.
1: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप समझिए. आप
1: ठीक है मैं क्या करूँ बताइए ना.
2: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
1: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से थोड़ा ना बीमार हो.
2: आपके कारण से हंसा मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से.
1: अच्छा ठीक है सर आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए.
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे
1: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ.
2: अब आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: तो ठीक है सर उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे
1: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब

0: वो कहते हैं
1: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
2: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

आइसक्रीम चॉकलेट मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियाँ। जी हाँ, पहेली तो लगेगी ना, क्योंकि अब आफ्टर 30s या 35 के अबव आपका गाना बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप बोलते हो डॉक्टर दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, यही रह गया है मेरी जिंदगी में, अब ये गाना इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स आइसक्रीम से कोई कैसे पीछा छुड़ा सकता है ना, और आइसक्रीम का नाम सुनते ही दूर कैसे रहा जाए भैया। आइसक्रीम का नाम से मुंह में पानी आने लग जाता है, ठंड सी लगने लग जाती है, सनसनी सी होने लग जाती है। तो बस अगर आपको भी ऐसा ही एक इवेंट चाहिए ना, ठंडा ठंडा सा एकदम कूल करने वाला, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूं। हाँ जी, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल आइसक्रीम शो होने जा रहा है ओएसएस स्टेज मॉल ऑफ कतर में, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं इस ब्रांड न्यू शो को। और ये एकदम नया होने वाला है, पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा ऐसा शो जहाँ पे आपको आइसक्रीम शो देखने को मिल रहा है। भाई गॉड यार, क्या होने वाला है ये तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जाके देखना जरूर है कि होगा क्या। एंड उसके अलावा आपको ये 3 अक्टूबर तक, माइंड यू 3 अक्टूबर तक ही है ये, जाना चाहते हैं इस वीकेंड जाइए, 4:30 PM से 8 PM तक ये रहेगा, और आप इंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड एक ठंडा ठंडा माहौल के साथ, कूल कूल माहौल के साथ इंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम शो को। और बस ऐसी मजेदार बातों के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए जब

होती है, दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलती है। जब वीकेंड की बात आती है और कुछ प्लान बन रहा होता है और बजट बिल्कुल जीरो होता है, तो भाई आपके लिए एक सोल्यूशन लाई हूँ। तो चलिए एक सिटी की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर और एक ऐसी पीसफुल जगह जहाँ पे नेचर खुद आपको वेलकम कर रहा है। इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली साथ में है, ओपन ग्रीन स्पेस है, आसपास बर्ड्स की आवाज आ रही है, ओए होए एनिमल्स और टर्टल्स फ्रीली घूम रहे हैं, और बच्चों के पास ना एक खुल के खेलने का स्पेस है। भाई एक्सप्लोर आराम से कर पाएंगे बच्चे, चाहे वो एनिमल्स को कर रहे हो, चाहे नेचर को कर रहे हो, सब कुछ। और ये हिडन जेम ना आपको मिलेगा अलशुआ रिजर्व में, अलखोर में। और ये सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है इसकी, की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का या मॉल या रेस्टोरेंट से थोड़ा बोर हो गए हैं ना, थोड़ा ब्रेक चाहिए वहाँ से, तो नेचर के साथ एक पीसफुल डे एंजॉय करना है, तो अलशुआ रिजर्व जाइए एंड स्पॉट दिस ब्यूटिफुल प्लेस विद योर फैमिली एंड निकल पड़िए एक बजट फ्रेंडली एडवेंचर पर। और फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिशिवन। इट्स आर्ट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट। अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
5: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
4: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
5: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256GB।
4: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
6: खट खट,
7: हू दैट?
6: अकबर।
7: अकबर हू?
6: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
7: खट खट, हू दैट?
8: Only on 89.6 Mirchi 1.
9: Mirchi,
8: it's hot.

बातें तो बहुत थी पर वक्त थोड़ा कम था। आपका साथ मिला तो हर पल कुछ खास था। और जब इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि जाने का समय आ चुका है। जी हाँ, और बस अब जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद जरूर करते रहिए। और उसके साथ अगर मैं चली गई अभी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो भी भेज सकते हैं मिर्ची ईशा के नाम से, या मिर्ची वन कतर पे भी आप हाय हेलो बोल के मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिप्लाई आता है और आप लोग बताते हैं कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और अब लेती हूँ आपसे अलविदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर और मिलती हूँ आपको अगले वीकेंड। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तुषार कपूर, आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
2: I don't have to mouth those.
3: Sorry bro, sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
4: Abu Sidra Mall mein shopping karo aur ghar le jao Toyota Land Cruiser.
5: Yes, bas 100 riyals spend kijiye aur paye free raffle coupon.
4: Grand prize 2026 Toyota Land Cruiser GXR, wo bhi do lucky winners ke liye.
5: Aur jeetne ka chance hai QAR 1 lakh cash prizes mein se plus 10 iPhone 18 Pro Max 256 GB.
4: To shopping karo, coupon lo aur ban jao lucky winner. Promotion valid 1 October 2026 se 16 March 2027 tak. Abu Sidra Mall, spend karo, raffle लो और ड्राइव द ड्रीम।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची 1
9: इट्स हॉट। सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लग गया।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं. कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंडट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं. उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं. हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का, बॉलीवुड का सबसे डेफिनेटिव म्यूजिक काउंटडाउन. और आज का जो काउंटडाउन है वो भी एक म्यूजिकल जर्नी है, जहां मिलेंगे नए हिट्स, पुरानी यादें और उन गानों के पीछे छुपे वो राज जिन पर शायद आपने कभी उतना गौर नहीं किया. सो I've got you covered. Number 20 पर है Welcome to the Jungle का ये गाना, ऊंचा लंबा कद, which has been rehashed. लेकिन इस जर्नी की पहली धुन होगी कॉकटेल की माशूका. Turn the volume up. This is the Mirchi Top 20. Let's go.
1: Number 19.

तमन्ना भाटिया के एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ये गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। I've already spoken about this song last week, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है

0: टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय साळगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17। दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देखिए बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता नहीं
1: कहाँ कहाँ से आ जाए मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों आराम कर दिया तुम जैसे
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए तो अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: किड्स आर बैक टू स्कूल बिजी शेड्यूल्स होमवर्क क्लासेस टेस्ट फ्यू सो मच टू डू वी नो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट हे लिटिल मोमेंट्स ऑफ फन आर इम्पोर्टेंट टू सो आर यू रेडी टू मेक योर स्कूल डे अ लिटिल मोर एक्साइटिंग
5: बिकॉज मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाई GWM इज कमिंग टू योर स्कूल मिर्ची आरजेस विल बी देयर विद फन गेम्स मस्ती एक्साइटिंग प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस बिकॉज लर्निंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व्स अ लिटिल फन टू
4: दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाई GWM
6: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
7: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
8: Cut, cut.
9: Who that?
8: Jassi.
9: Jassi? Kaunsi wali Jassi?
8: Jassi who has come, Aunty ji?
9: Cut, cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
0: Suren ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
10: Number 16.

0: कॉकटेल 2 लुक लाइक अ ग्लोबल फिल्म और ग्लोबल बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मॉडर्न दिखने की कोशिश में हम अपनी ही आवाज को पुराना समझने लगते हैं। परफेक्ट हिंदी बोलें तो बैकग्राउंड हम्बल लगता है, इंग्लिश मिला दें तो सोफिस्टिकेटेड लगता है। और ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये अपनी जड़ों को देखने का सवाल है। जावेद अख्तर, उन्होंने इसी डिस्कम्फर्ट को कुछ साल पहले एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल में बदल दिया था।
1: आज अगर आप किसी नौजवान से मिलते हैं, लड़के या लड़की से, जो परफेक्ट हिंदी बोल रहा हो, तो आपके सबकॉन्शियस में एक बात पैदा होती है कि किसी गरीब घराने का है, ये कोई हम्बल बैकग्राउंड से आया है, आपका अपनी लैंग्वेज के बारे में ये ओपिनियन हो गई है। अगर वो गलत हिंदी बोलता है तो एक बैकग्राउंड इसका अच्छा होगा। ये बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी रूट्स पे इतने शर्मिंदा हो, कौन सी लैंग्वेज की हम परवाह कर रहे हैं, हमारी तो भाषाएं जो है सिमट रही है सारी की सारी। वो एक दिन थे जब आप उर्दू का गम करते थे, आप तो आप हर हिंदुस्तानी जबान का गम कीजिए, हमारी वोकैबुलरी सिमट गई है, हम बिना अंग्रेजी के 15 वर्ड इस्तेमाल किए हम बात नहीं कर पाते हैं।
0: जावेद साहब की बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, बात यह है कि दुनिया के सामने मॉडर्न दिखने के लिए क्या हम अपनी ही जड़ों को अनुकूल समझने लगे हैं। सिनेमा दुनिया से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अपनी पहचान छोड़कर ग्लोबल बनना शायद प्रोग्रेस नहीं, एमनीजिया है। और इसलिए कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम कहां से आए हैं। ओम शांति ओम से सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल का वो टाइमलेस एहसास, कंपोज्ड बाय द मैवरिक्स विशाल एंड शेखर, मैं अगर कहूं रिटन बाय जावेद साहब। Thank you for making us rewind to our thoughts. This is my rewind track of the week.
2: Top 20. Rewind.

0: मतलब मैवरिक्स विशालन शेखर, मैं अगर कहूँ रिटन बाय जावेद साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग अस रिवाइंड टू आवर थॉट्स, दिस इज माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
8: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
6: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
9: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
10: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
11: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
10: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
11: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
10: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
12: खट खट,
13: अगर कर
12: हो, अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
13: खट खट, हो दैट।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 15.

अरिजीत की आवाज को धीरे धीरे गुडबाय कहने का दर्द अपनी जगह है, लेकिन इसी वक्त जिंदगी ने एक छोटा सा सरप्राइज भी दिया है। कभी कभी बचपन किसी फोटोग्राफ में नहीं मिलता, एक आवाज में मिल जाता है।

0: बस ये दो लाइनें। और पता नहीं क्यों एकदम से वो घर याद आ जाता है, वो उम्र जब गाने सुनने के लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं होती थी, वो कैसेट्स, वो सीडीज, वो टीवी पर आया गाना, वही साउंडट्रैक था। लकी अली को सुनते हुए हमने सिर्फ गाने नहीं सुने थे, हम बड़े हुए थे। और शायद इसलिए आज भी अगर कोई ओ सनम किसी हाउस पार्टी में गा देता है या किसी इंटीमेट कॉन्सर्ट में अचानक वो आवाज सुनाई देती है, तो हम गाने को जज नहीं करते, हम उस पल में लौट जाते हैं। इसलिए दृश्यम 3 के मेकर्स ने लकी अली से मुस्कुरा दो गवाया है, क्योंकि लकी अली जब गाते हैं ना तो कॉम्पोजिशन पीछे रह जाती है, लिरिक्स भी पीछे रह जाते हैं, सामने हम खड़े होते हैं अपनी ही पुरानी जिंदगी के सामने। और मुझे इस गाने को एनालाइज नहीं करना यार, ना इसका म्यूजिक डाइसेक्ट करना है, ना लिरिक्स को मार्क्स देने हैं, बस एक बार फिर उस लड़के के साथ बैठना है जो कभी लकी अली को सुनता था, गुनगुनाता था, और उसे पता भी नहीं था कि वो दिन एक दिन याद आएगा। दृश्यम 3 से लकी अली का गाया मुस्कुरा दो, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।
1: ये चांद तारे लाके तुम्हारे कमरे की छत पे मैं सजा दूं।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
2: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
7: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
6: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
7: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256 GB।
6: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 12।

सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलेडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है। देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है। बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहाँ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का, माय पिक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 10.

3 साल तक रणबीर कपूर की एक फिल्म का इंतजार किया और अब अगले 3 महीनों में 2 फिल्में मिलने वाली हैं, रामायण एंड देन लव एंड वॉर। एक तरफ संजय लीला भंसाली रीयूनाइट्स विद रणबीर कपूर आफ्टर 19 इयर्स एंड दूसरी तरफ यू गॉट अ रियूनियन दैट्स गॉट एवरीवन टॉकिंग, क्योंकि 21 साल बाद एक ऐसी जोड़ी लौट रही है जिसके गाने सिर्फ हिट नहीं थे, वो पूरी स्क्रीन इमेज बना रहे थे, इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया। 2005 में इसी कॉम्बिनेशन ने आशिक बनाया आपने दिया था और हिमेश ने इमरान के लिए जो म्यूजिक बनाया वो सटल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, इट वॉज ब्रूटली कमर्शियल, इट वॉज इन योर फेस और रिपीट पे चलने के लिए बना था।

इसके अलावा देयर वाज आल्सो आपकी कशिश इन द सेम एल्बम एंड देन वी गॉट अ बैंगर जो सिर्फ गाना नहीं था उसने इमरान की स्क्रीन इमेज को एक म्यूजिक

0: और फिर वक्त ने वही धुन दोबारा छेड़ दी। 21 साल बाद वही डायरेक्टर आदित्य दत्त, वही कंपोजर मिस्टर रेशमिया एंड वही इमरान हाशमी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पुरानी यादों की नहीं है, हिमेश खुद गा रहे हैं इमरान के लिए। अफसाना बनाया आपने, जैसे आशिक बनाया आपने ने इमरान को एक म्यूजिकल इमेज दी थी, वैसे ही अफसाना बनाया आपने उस केमिस्ट्री का नया चैप्टर लिखने आ रही है। तो क्या ये रियूनियन सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या फिर इमरान और हिमेश की वो पुरानी म्यूजिकल केमिस्ट्री अब भी कमाल करेगी। बाय द वे, हिमेश जी से एक और रियूनियन की कहानी भी सुनेंगे जो सूरज बड़जात्या के साथ उनकी हो रही है, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या इमरान हिमेश का ये कॉम्बो वो केमिस्ट्री रिपीट पे चला सकता है। दिस वन हैपेंस टू बी फ्रॉम गन मास्टर 69। ये है अफसाना बनाया आपने,
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
3: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance plus flexible payments and 7% cashback.
4: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
2: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन.
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए.
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256 GB.
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम.
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
12: Number 7.

रातों में आना फ्रॉम द मूवी वाइब डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू। और पहले ही कह देता हूं आई लव कुणाल, आई थिंक ही इज अ सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर एंड डायरेक्टर। अनफॉर्चुनेटली वाइब वो ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई जो शायद वो बन सकती थी, लेकिन इस गाने को सुन के एक चीज बार बार खटक रही है कि यार फिल्म का पहला गाना एल्बम का सबसे अच्छा गाना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका काम कुछ और ही है। देखो पहला गाना फिल्म का हैंडशेक होता है, आप ऑडियंस को पहली बार उस दुनिया में मिलते हो, उन्हें बताना चाहते हो कि फिल्म किस मूड की है, इसका तापमान कैसा है और क्या इसके लिए थिएटर जाना इंटरेस्टिंग होगा। देखो धुरंधर का एग्जाम्पल देते देते मैं तो थक गया हूं तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा कितने एग्जाम्पल्स हैं। रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ ये जवानी है दीवानी, या जब बजरंगी भाईजान में हम पहली बार पवन से मिले थे,

चाहता है। इनमें से हर गाने ने एल्बम की पूरी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना किया कि फिल्म की दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और फिल्म मेकर्स के लिए मेरी एक बहुत ही सिंपल सी नसीहत है, पहले गाने पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। उसे हिट होना है, कैची होना है, लेकिन सबसे जरूरी उसमें फिल्म की एक झलक होनी है। प्रीतम दा ने ये बखूबी किया इन अनदर फिल्म जिससे हमें उस दुनिया का एहसास हुआ। दैट फिल्म वाज दिलवाले और उसका पहला गाना था गेरुआ। दिस वाज ऑल अबाउट शाहरुख एंड काजोल हु आर मेकिंग अ रिटर्न टू द सिल्वर स्क्रीन। अरिजीत सिंह के लिए मेरी एक बहुत ही सिंपल सी नसीहत है, पहले गाने पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। उसे हिट होना है, कैची होना है, लेकिन सबसे जरूरी उसमें फिल्म की एक झलक होनी है। प्रीतम दा ने ये बखूबी किया इन अनदर फिल्म जिससे हमें उस दुनिया का एहसास हुआ। दैट फिल्म वाज दिलवाले और उसका पहला गाना था गेरुआ। दिस

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
10: जबरदस्त ट्रैक्स।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Context.
1: It's hot.
2: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
0: Number 5.

0: कुछ फिल्म मेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूफ तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था, इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी के हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड आल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है, किसने सोचा था। बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड आल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
5: Toilet?
4: हाँ.
5: School था, कंजर खाना खुला हुआ था.
4: So, दोनों.
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
6: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
7: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन.
6: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए.
7: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB.
6: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
8: नंबर 2.
9: बंद

वारूम नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते। और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है, यह आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो कहने और वो घोड़े, वो स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 yet again। नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
2: Mere bete aayenge, mere Karan Arjun aayenge.
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: वीकेंड का मूड ऑन है, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर और पार्टी का वॉल्यूम ऑलरेडी फुल। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची और योंतिका, जहां म्यूजिक रुकता नहीं, एनर्जी थकती नहीं और हर बीट के साथ सेलिब्रेशन थोड़ा और लाउड हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस पार्टी, हियर वी गो।
1: आंधी बन के आया हूं,

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gambana. Burga, burga. Navid bala burga. Mirchi, burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
4: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है. डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी? जे जे जे जे जे, ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
4: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
3: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
4: है, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे जे.
4: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा. फूड कतर 2026, कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
7: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
8: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
7: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
9: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
10: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन.
9: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए.
10: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB.
9: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम.
11: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
12: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
14: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
15: Ladies and gentlemen, we are gonna go
16: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
8: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
6: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
9: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamond. काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेज, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Ritchie. It's hot.
3: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
5: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
6: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
7: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
3: राजकुमार हिरानी, मे एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
1: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल।
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
9: Yes, it was the best. I like the magic show.
10: Magic show, and you?
11: I also like the magic show very much. It was so good. It was very nice.
10: You liked it?
11: Yes.
10: We should come again?
11: Yes.
10: What's your name?
11: Aira.
10: And yours?
11: Anvita.
10: What was the best?
11: The magic show.
10: And you?
11: Magic show. I like magic show.
10: Magic show. Jamshi uncle was great.
11: This recharge is so cool.
12: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
13: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
12: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
13: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
12: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
14: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
15: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
16: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
17: 89.6 FM, Mirchi 1.
2: It's hot.
18: Ladies and gentlemen, we are gonna go
19: on a ride.

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,39। हो गया।
2: हाँ जी,
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
7: Our business is our business, none of your business.
8: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
9: Qatar का number one radio station.
10: 89.6 FM, Mirchi 1.
11: It's hot.
12: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
13: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
12: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
13: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256 GB।
12: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
14: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: 89.6
2: 89.6
3: FM Mirchi 1
2: It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
2: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
1: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
2: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256GB।
1: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
3: खट खट,
4: हू देयर?
3: हुमायूं?
4: हुमायूं हू?
5: अरे हू आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
4: खट खट, हू देयर?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, We are gonna go!

0: only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ों लोग के

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।
1: हार्ट बीट

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, हाँ जी बोलिए।
3: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
3: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
3: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
3: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर,
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है।
2: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
3: हेलो,
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चला के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है। हेलो,
3: फिर कोई
2: यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।

0: ले चप्पल, पता ना
1: कहाँ पता ना कहाँ कहाँ से आता है, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों,
0: जीना आराम कर दिया तुम जैसे,
1: जीना यहाँ से भाग, इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा, चप्पल चप्पल मेरे हाथ में,
0: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट पका।
5: नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
7: कैसे रुक सकता है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
8: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अबे कौन है?
2: उत्तपा।
1: उत्तपा कौन?
2: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
1: खट खट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi One. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: 89.6 89.6 FM Mirchi 1
7: It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are going

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची। वीकेंड का मूड ऑन है, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर और पार्टी का वॉल्यूम ऑलरेडी फुल। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची और योंतिका, जहां म्यूजिक रुकता नहीं, एनर्जी थकती नहीं और हर बीट के साथ सेलिब्रेशन थोड़ा और लाउड हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस पार्टी, हियर वी गो।
1: आंधी बन के आया

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए ये देखिए।
2: हेलो
3: हाँ विनीत जी मजा है, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
2: हेलो हेलो
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन
4: विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खटखट
7: हूँ दैट
6: जाहिर,
7: जाहिर जाहिर हूँ,
6: जाहिर सी बात है मैं ही हूँ और कोई नहीं।
7: खटखट हूँ दैट
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
8: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर
12: गोना गो ऑन अ राइड।
7: Qatar ka number one radio station.
13: 89.6
10: FM Mirchi One. It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go
12: on a ride.
13: With Oyon Deka and DJ Richard.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
4: आई डोंट हैव टू माउथ दोज
5: लाइंस. सॉरी ब्रो, सॉरी.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दू? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
3: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Ladies and gentlemen.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है
1: सर मैं जब भी घर आता हूँ ना पापा जाग रहे होते हैं वो सोते ही नहीं है तो क्या करूँ
2: अच्छा पापा जाग रहे होते हैं तो एक काम कर चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू
3: रख रख
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड

मुकाबला डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और यौन टिका का विद क्लब मिर्ची बेबी. नो नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज. दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची. लेट्स गो.

इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची इट इज।

नया क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए तीन करोड़ सात लाख सात सौ उनतालीस।
2: हेलो
3: हाय, ये तो फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए चार एक नौ आठ तीन नौ आठ तीन।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुन रहा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए पाँच करोड़ सात लाख तीन सौ उनतालीस। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। फेस्टिव सीजन का स्पार्कल, वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे। स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी।

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
5: भट्ट। अरे भट्ट हूँ।
6: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खट खट हू दैट।
3: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
8: On a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard. Only on

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: झुमका गिरा रे

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी
3: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में है क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
3: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
4: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
4: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा
3: मैं देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
4: चप्पल
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
4: क्यों आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: हेलो शॉप्स आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल वन ऑफ अ काइंड बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो
9: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
10: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
2: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: अकबर।
5: अकबर हू?
4: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
5: खट खट, हू दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Hollywood Bollywood border
1: only on Mirchi it's hot
2: हुमा कुरैशी आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेता राय उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में मगर तुम बोल नहीं सकते
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डर बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
5: अरे बोलना मामू मिर्ची हेल्पलाइन व्हाट इज द क्वेश्चन
4: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है इसे कैसे रोकूं
5: अरे सिंपल है ना मामू पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना प्रॉब्लम सॉल्व
6: आपसे पूछना था आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो विनीत जी।
1: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
1: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
1: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
1: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बच जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
1: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
1: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
1: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
1: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
1: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
1: ये बारात का बजा रहा है, किसी के सरात का बजा रहा है ये?
2: मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
1: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
1: अच्छा भैया मेरे यहाँ वाले थे, बजाने वाले थे।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। 89.6 89.6 Mirchi 89.6 89.6 It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
7: जबरदस्त ट्रैक्स,
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।